0: ᱵᱟᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤᱠᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱮᱨᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱮᱜᱚ ᱱᱟᱱ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱦᱟᱨᱟᱯᱛᱤᱱᱟ ᱦᱟᱨᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱫᱚᱱᱚ ᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱫᱟ
1: ᱚᱱᱞᱮ ᱟᱨᱜᱮ ᱡᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱠᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱫᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱚᱛᱟᱨ ᱭᱟᱛᱟᱨ ᱭᱟᱛᱟᱨ
2: ᱟᱝᱜᱟᱛ ᱪᱮᱝᱜᱚ
0: ᱟᱠᱤ ᱟᱝᱜᱚ ᱡᱚ ᱦᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱠᱚ
2: ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱮᱠᱚᱜᱟ
0: ᱭᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱟᱢᱩ ᱜᱤᱱᱟᱨᱮ
2: ᱢᱮ ᱥᱩ ᱛᱟᱱᱨᱤ ᱡᱟ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱪᱤ ᱪᱷᱞᱢᱟᱨ ᱡᱤᱛᱚᱱᱟ ᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱᱨ ᱭᱟ
0: ᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤᱭᱮᱱ ᱢᱤᱱ ᱯᱚᱠᱷᱛᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱤᱱᱨ
2: ᱞᱟ ᱞᱚᱱᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱧᱩᱜᱚ
0: ᱭᱟ ᱛᱚᱪᱚᱫ
2: ᱪᱤ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱤᱛᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱜᱟᱨᱟ ᱜᱚᱱᱢᱟᱨ
0: ᱟ ᱵᱟᱝᱤ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱢᱚᱠᱚ ᱞᱟᱝᱜᱚ ᱱᱤᱛᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱᱤ
2: ᱪᱤ ᱞᱟ ᱞᱚᱱᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱜᱨᱤ ᱜᱚ ᱵᱚᱡᱚ ᱱᱚ ᱱᱤ ᱦᱤᱱᱨᱤ ᱪᱟ
0: ᱭᱮ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱟᱝᱟ ᱛᱤ ᱛᱮᱢ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱫᱜᱤ ᱱᱟᱭ ᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱨᱩ ᱪᱮᱣᱚ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱠᱤᱱ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱟ ᱱᱮ ᱠᱤᱥᱞᱤ ᱠᱟᱱᱭᱟ ᱠᱤᱱᱜᱚ ᱜᱚ ᱱᱚᱨᱟ ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱜᱫ ᱜᱟᱨᱜ
2: दे दी चीज जोटा अंदर कुरा माबजिस को
0: आ या या थैंक यू माता दी चीज में ना त मचटी त कोपा में सुन लगो कर कर ने खिते रे आ वा वा वा दराज जोर अंगा मुज गर कोन गो न दे आ त चत गे दी
2: त तरा छों सुन रे
0: छों सुन रे ती मार त दराज त छे जोर ती मंग सुन गा
2: छेउ गोसे नु छुरे त गा मार
0: अब दिन दिन दिन ngay ngay त चंग गों गों जुक साय ओन मार गो त छेज गी कोपा दक तन थिन और गोस तान द शेली छे त मोर गा मोर अकन जना वन वन त जिन त मा वनी गा हम छत त गों जु लेरे मे अरे यों दी छि छि छों द रा छरे खरे
2: हं नी छिन दी रा छि छि छरा खसे जिरिन दोला का दी छों ये
0: ay ay karna ay ya olafsın gute ta tatmaz gerek
2: ka dombi gonu chisumra shutri
0: khsamra shutri
2: a chini no zertir mararo chi söz kılıg ne gormuksum ga hama gani ni tanga chisumra mutu
0: o re re chisumra mutu ya ko tagu chisumra mutu ka jume kara wap kin dang mek Ani xia ko, xie le ma ke na ma ke, gan mu nyang ma ji, qiong wo ta nyuo dang de de.
2: Mo chua ro, la long dang nyuo guo zi chuo xia la mo.
0: Ngo ma yin guo, ngo ma yin de, ngo mi ma dang ma, dang ngo ma guo ba me la.
2: Mo chua mo chua, mo nyuo na nyuo ji zi che ji.
0: Tu re chuo re ta, nge ra xie ku nyuo ji zi ne re. Xie ku ta chi ta ji zi nu mi ni nyuo ji zu ta ka nang ni chuo ke bi go no ma ra guo ro.
2: Chuo, tsukwa kwenye zga marga, alapa nguhiga?
0: Alapa mapazu mahira, mandang na kopa mesongnur, manyine manda makhinur, yochi.
2: Shirako, wae, chiyo yenda mna nyugo.
0: Ah, oh, ya, chif ya chi, chigla nyonur, ya, den, ya, chirgi, chungu dhukhu shinato.
2: Ka, de, tatang tuk dungwari, zinita chulgni, gormu lantangay mani, laga chig anjokwa rangi, hirti.
0: ᱟᱣ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱚᱞᱤ ᱛᱟᱝᱟᱨᱟ ᱫᱮ ᱭᱩᱝ ᱢᱚᱨᱜᱩᱱᱤ ᱢᱚᱞᱚᱢ
2: ᱛᱟᱡᱤᱥ ᱜᱤᱨᱤ ᱱᱤᱪᱷᱚ ᱛᱟᱭᱜᱤ ᱤᱵᱡᱚ
0: ᱛᱮᱥᱤᱜᱚ ᱛᱮᱥᱤ ᱛᱟᱱᱡᱚ ᱜᱤ ᱥᱚᱝᱠᱷᱩᱱᱤ ᱪᱩᱱᱟ ᱢᱩᱠᱯᱩ ᱞᱟᱝᱤ ᱠᱟᱞᱟᱜᱚ ᱟᱫᱟᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱣ ᱫᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱛᱞ ᱠᱟᱢᱮ ᱛᱟᱝᱱᱟᱨ ᱚᱫᱜᱤᱝᱜᱚ ᱟᱫᱤ ᱟᱫᱤ ᱫᱤᱜᱤ ᱦᱤᱢᱤᱝ ᱟᱠᱷᱛᱚ ᱟᱭ ᱜᱟᱯᱥᱟᱞ ᱫᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱠᱷᱤᱨᱟᱱ ᱡᱚᱨ ᱜᱚᱛ ᱟᱨᱚ ᱧᱮᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱥᱮᱨ ᱪᱮᱱᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱯᱭᱟ ᱱᱩ ᱠᱟᱨᱤᱝᱜᱚ ᱯᱚᱞᱟᱝ ᱧᱟᱱ ᱢᱟᱨᱜᱣᱟᱨ ᱛᱟᱞᱩ ᱛᱟᱞᱩ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱜᱚᱪᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱫᱤᱜᱛᱤ ᱟᱞᱞᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱠᱤᱪᱤ ᱛᱤᱠᱨᱤ ᱫᱤ ᱱᱚᱢᱟ ᱯᱚᱞᱟᱝ ᱮᱫᱟᱢᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱱᱚᱫᱚ ᱚᱨᱜᱩ ᱪᱤ ᱭᱚᱝᱛᱟ ᱠᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱠᱚ ᱟ ᱱᱮᱪᱩ ᱛᱟᱢᱚᱫ ᱜᱨᱤᱫᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱫᱩ ᱧᱮᱥᱮ ᱱᱚᱱᱫᱟ ᱯᱷᱭᱟᱞᱤ ᱢᱩᱦᱤᱢᱩ ᱠᱟᱨᱤᱵ ᱫᱮᱢ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱤ ᱨᱮ ᱭᱚᱢᱩ ᱪᱩ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱚᱜᱱᱚᱫ ᱟᱱᱡᱚ ᱥᱮᱢᱟ ᱟᱵᱫᱤᱱᱩ ᱛᱮᱭᱝᱜᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱪᱷᱟᱢᱞ ᱱᱟᱜᱜᱟᱡᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱞᱟᱱᱪ ᱠᱤᱪᱤ ᱛᱷᱤᱜᱤ ᱛᱚᱭᱢᱟ ᱞᱟᱜᱛᱤ ᱠᱤᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱢᱟ ᱱᱟᱜᱛᱷᱤᱱ ᱯᱟᱵᱫᱩᱱ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱨᱮᱞᱟ
2: ᱠᱷᱟᱭᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱫᱚᱥᱭᱟᱞᱤ ᱪᱷᱚᱭᱚᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱜᱚᱱᱟᱜ ᱭᱚᱛᱟᱱ ᱛᱟ
0: ᱛᱟᱠᱚᱢ ᱵᱟᱪᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱷᱛᱤ ᱢᱟᱠᱚ ᱟᱪᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱷᱛᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱤᱱᱭᱟ ᱥᱮᱱᱚ ᱫᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱟᱫᱮᱨᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱢᱚ ᱯᱷᱮᱞᱟ ᱪᱷᱩᱞᱜ ᱢᱤᱱᱤ ᱱᱚ ᱦᱟᱢᱛᱟ ᱦᱟᱢᱫᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱮᱵ ᱞᱟᱝᱜᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱱ ᱫᱤᱜᱢ ᱦᱮᱠᱤᱡᱤᱱᱟ
2: ᱚ ᱛᱟᱦᱤᱛᱟ ᱦᱟᱢᱫᱚ ᱱᱚ ᱱᱤᱨᱜᱤ ᱦᱮᱵ ᱞᱟᱝᱜᱤ ᱦᱟᱨᱟᱥᱢᱩᱭ ᱟᱹᱱᱭᱟᱝ ᱞᱟᱝᱛᱟᱝ ᱛᱟ
0: ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱤᱜ ᱢᱟᱨᱮᱛᱟ